देखा तह डूबी अले मान एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलियार ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तन की शरणा जन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया अवर काज तेरा कतैना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजा मिलाग भव जल तरन कै जन्म मृथा जात रंग माया कै राउ जप तप संजम धर्म ना कमाया

शर्मा पातशाही दसवीं कव्योबाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दोष्ट सब तुम कावो आप हाथ दै मोहे बचावो सुखी वसै मोर परिवारा सेवक सिख सब करतारा मो रक्षा निज कर दै करे आए सब बैरन को आज संगरे आए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अबर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे उभरे है मरण काल का त्रास निवरे है हु जो सदा हमारे पछा सरिया सुजू करे हो रक्षा राख ले हो मुह राख नहारे साहेब संत साहे प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरा तंदरालम जानत बेद भेद अरयालम निरंकार निर्बकार निरलंब आद अनिल अनाद स्तंभ ताका मूढ़ चारत बेदा जाको भेव नाम पावत बेदा ताको कर पहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कैद सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तो है तेती तुमरा लखा न जाई पसारा के विद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज किन्नी पुत पुज खान बहोर रच दीनी कहूँ फूल राजा हवे बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आदि जुगाद स्वरूप सुयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उभार असिख संगरो दोष जेते उठवत उत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दोष्ट दुख तहवै मरे पुरख जबन पग परे तिहारी तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला
दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जहिन हरिहो, तांके ताप तन कमो हरिहो। हृद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शा सुब सक न कोई। एक बार जन तुम सुभार, काल फास दे ताहीं उबार। जिन नर नाम तुहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते ले बचाई। सवैया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते कहूँ आंख तरे नहीं आने। ओ राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न माने। ओ सिमरत शास्त्र वेद सब, बहु भेद कहे हम एक न जाने। ओ सरी असपान कृपा तुमरी कार, मैं ना कहूँ सब तोहे बखाने। ओ दोहरा सगल दो

आपे तरस पयोई, तरस पया मेरा मत होई, सतगुर सजन मिलया, नानक नाम मिलै तां जीवां, तन मन थीवै हरियाल।

अंतरजामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोक अवकार संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कर एकत के हम बारिक तू मेरा गुरहाई, पर तू मेरा गुरु है। गुरु होने के नाते मेरी तेरे चरणों में अरदास है, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, जियो हमारा बल बल जासी। हे गुरु मित्र मेरा जियो, मेरी जिन तेरे तो बलिहार बलिहार बलिहार जा, पर मेरी मंग की है हर दर्शन दे हो दिखाई, मैनू हरी दे दर्शन करा। तो गल शुरू हो गई, गल आरंभ हो गई कि सिख ते गुरु दा रिश्ता की है, ते सिख ने गुरु को प्राप्त की कर, पर प्राप्त करन दा तरीका जुगती जो है वो गुरु अर्जन देव पातशाह इउं समझांदे ने, सिख ने आके होर गल्लां नहीं मंगनियां, क्योंकि सतगुरु कहंदे ने मम्मा मांगण हार इआना, देन हार दे रहे हो सुजाना, जो दीनो तो एक है बार, मन मूर्ख करे पुकार, जो मांगे तो मांगे बिया। ये बिया शब्द लेंदी बोली दा मुल्तान वाले बिया के नाम। हे मूर्ख मन, जदू तू गुरु को आउंदा भी है ते होर चीजा मंगी जाने, जो मांगे तो मांगे बिया, जाते कुशल न काहू थिया। जिन्हां चीजा नू लेके अज तीकर किसे नू सुख नहीं होया, बहुते धन वाले भी देखे हन, बहुती दौलत वाले भी देखे हन, बहुत वड्डे परिवारां वाले भी देखे हन, उन्हां चीजा विचों किसे नू सुख नहीं थे, क्योंकि पातशाह फरमांदे ने सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहुत देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। जे भाई सुख की प्राप्ति चाहिए तो वह स्वाय परमेश्वर दे दीदार तो होर किधरे भी नहीं। इत्थे बड़े बड़े पदार्थां वाले भी रोंदे ही चके, इसलिए पातशाह कहिंदे गुरु कोलों आके जे कुछ मंगना है तो एको चीज, मम्मा मांगण हार एना, देन हार दे रहे सुजाना, जो दीनो सो एक है बार, जो परमेश्वर ने देना है मैनू तुहानू वो एको बारी दे दिता, जन्म तो लैके मरण तक का दे दिता। मन मूर्ख का करें पुकार, जो मांगे तो मांगे बिया, जाते कुशल न काहू थिया। उही चीजा बार बार मंगी जान जिन्हां नूं लै के अज तीकर कोई सुखी नहीं होया, फिर पातशाह आप ही कहंदे ने जे तू नहीं मंगणों हट सकदा नहीं रुक सकदा फिर मेरी सलाह मन, मांगण मांगता है कै मांग, मांगण मांगता है कै मांग।

भयो अनुग्रह प्रसाद संतन के हर नामा है मीठा, पर कदे भूल के नहीं कहना ये मेरे यतन नाल। जे मैं असी आम तौर से गलती कर पे, मैं सवेरे उठा, मैं नितनेम कीता, मैं आ कीता, मैं वो कीता, नहीं नहीं नहीं। जन नानक को गुर कृपा धार, जन नानक को गुर कृपा धारी, जन जन नानक को इथे गुरदे रारे नू सहारी है। नानक दास जी फरमांदे ने मेरे ते गुरु ने कृपा कीती है, और हुण ओ कृपा किस रूप च हो गई, सब अकुल निरंजन दीता, सब अकुल निरंजन दीता, सब हुण मैनू कुल रहत परमात्मा, माया दी कालक तो रहत परमात्मा सारयां विच नजर आउण लग पिया है। पुछो गुरु अर्जुन देव पातशाह कहने, जब बिसर गई सब तात पर आई, बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोह पाई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी ना ही बेगाना, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई, सगल संग हमको बन आई, सबको मीत हम आपन कीना, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिर।

0: आस्था दीवार भी दसवीं तोड़ी और उसके नाल पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दो श्लोक प्रथम श्लोक विच जो साहिब मूल भाव अंकित करते हैं वो ये नानक वखाणे बेनती उदबाद कूड़ो को। हे प्रभु मेरी ये बेनती है अरदास है तैथो बिना सब मिथ्या है तैथो बिना सब कूड़ है तू ही सच है बाकी सब कूड़ है जो हुण है ते बाद विच नहीं जो सवेरे नहीं ते शाम नू है जो शाम नू है ते सवेरे नहीं उन्हों कूड़ कहते हैं उन्हों मिथ्या कहते हैं उन्हों झूठ कहते हैं। सच ते सदीवी है पर संसार सदीवी नहीं। एक गल वक्री है कि संसार नू निरंकार दी छाया है पर जैसे दरखत दी छाया बदल दी है ढल दी है हू बहु संसार बदल दा है ढल दा है लेकिन सच अपनी थां ते अटल है कायम है। दरखत ते अपनी थां ते खड़ा है छाया ढल दी है बन दी है खत्म हो दी है हू बहु संसार बन दा है ढलदा है खत्म होता है पर निरंकार नहीं चला। साहिब कहने ने हे अकाल पुरख तैथो बिना सब कुछ कूड़ है तो सब कुछ वेच जो कुछ खास जिक्र करण योग है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उसका बकायदा जिक्र किया है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार संसार वेच सब तो वड्डी हस्ती हुक्मरान है राजा है उही चर्चा का पात्र बनता है उही मनुख की जबान से ज्यादा होता है मनुख के विचारों विच भी राजा ही छाया रहता है। प्राचीन समय तो ऐसा ही चले आ रहा है कि मनुखी जहन विच मनुखी गुफ्तगू विच राजा ही मौजूद रहता है जो हुक्मरान होता है उदी ही चर्चा जो हुक्मरान है उदी सोचनी उन ते ए व्यापक सोचनी है ते व्यापक कथनी है लेकिन साढ़े देश विच बहुत ज्यादा है जिथे भी दस पांच बंदे बैठे हों उथे चर्चा राजनीति दी हुक्मराना दी गुफ्तगु यही सोचनी यही किसी थां बैठ के कोई महफिल सजे चर्चा किसे न किसे हुक्मरान दी चल पेगी। दुनिया भर दे अखबार ते दुनिया भर दे होर प्रसारण दे जिहड़े साधन ने वो करीबन करीबन राजे की ही चर्चा करते ने हुक्मरान की ही चर्चा करते ने ते मनुख यही कुछ सुनना चाहता है ते मनुख यही कुछ सोचना चाहता है। पर साहिब कहने कूड़ राजा राजा भी झूठ है मिथ्या जो अज है ते कल नहीं है उन्हों किस तरह राजा मनी है। कहने धार्मिक लोगों ने राजा शब्द दिता ते परमात्मा नूं सी लेकिन बाद विच व्यक्तियां नाल जुड़ गए जो संसार का मालिक है सच्चा मालिक है राजा ते उन्हों आख्या गया बाद विच जो मुल्कां दे वक्ती आरजी मालिक बन बैठे उन्हां दे नाल भी ए राजा लकब जुड़िया। भगत कबीर कहिंदे ने को हर समान नहीं राजा ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। हरी समान होर कोई राजा नहीं है वो व्यापक है और उसकी मलकियत है वो ऐसा नहीं कि आज है कि कल नहीं होगा। उस राजे नाल शब्द जोड़िया गया अकाल समय तो परे असी समय दे विच हाँ प्रजा ते राजा समय दे विच ने पर वो परम राजा महाराजा वो अकाल पुरख समय तो परे है। शायद इसी वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आपनू राजा ते महाराजा करके आख्या राजन के राजा महाराजन के महाराज ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन जाए। हे प्रभु ऐसे महाराजे नू छड़ के ऐसे राजे नू छड़ के मैं होर केड़े राजे दा चिंतन करा होर केड़े हुक्मरान दे नाल जुड़ा। तो वो अकाल पुरख राजा है रजे होया त्रिपति लेकिन ए लकब जुड़ गया उन्हां व्यक्तियां दे नाल जो व्यक्ति तौर पे और आरजी तौर पे कुछ समय लई ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਕੂੜ ਹੈ, ਪਰਜਾ ਦਾ ਪਰਜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬਾਲਕ ਖੇਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਰਜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਦਾ ਖੇਲ, ਬਾਲਕ ਦੀ ਇਹ ਲੀਲਾ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ ਦੀ। ਔਰ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੌਧਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਰੇਡੀਓ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੇਡੀਓ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਸ ਕੇ ਹੈਨ ਖਿਡੌਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਚਪਨਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਅਜ਼ਲ, ਨਕੇ ਬਾ ਸਾਲ, ਤਵੰਗਰੀ ਬਾ ਦਿਲ ਅਜ਼ਲ, ਨਕੇ ਬਾ ਮਾਲ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਮੀਰੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਪਦਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਖੁਦ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਛਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਕੂੜ ਹੈ, ਮਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਮਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਖੇਡ, ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਸਭ ਮਿੱਥੇ ਆ। ਪਰਜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕੂੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਲ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਥਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਥਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਜਗਤ ਮਿੱਥਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਕਰਤਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਜੀਵਣਾ, ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਜੀਵਣਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜੀਵਣਾ, ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਥਿਆ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜੀਵਣਾ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਣ ਮਿੱਠਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਜਗਤ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੈ, ਮਿੱਥੇ ਹੈ। कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसन हार सोने सोने चंदोए शामियाने ताने और खूबसूरत महल माड़िया तो इना महल माड़िया विच रहण वाले बैसन वाले साहिब कहिंदे सब कूड है सब मिथ है ए माड़िया अज हैं कल नहीं ए शामियाने तने हुए अज हैं कल नहीं और इना विच रहण वाले अज हैं ते कल नहीं। इस वास्ते कुछ धार्मिक पुरुषा ने इत समुचे संसार नूं इक धर्मशाला ही कह दिता है मुसाफरखाना कह दिता है। मुसाफरखाने विच जैसे मुसाफर आउंदे ने जाउंदे ने सदीवी कोई नहीं टिकदा सराय है ये जगत आवना जावना इस विच बने हुए रोज नवे जीव आ रहे ने रोज पुराने रुखसत हो रहे हैं। मुसाफरखाना कोई इस मुसाफरखाने च 80 साल रहिंदा है कोई 60 साल रहिंदा है कोई 40 साल रहिंदा है कोई 40 दिन रहिंदा है रुखसत हुंदा है होर नवे हुंदे ने। ये आवाजाई इस मुसाफरखाने च रोज जारी है। नैनो देखत ए जग जारी देखदियां इन्हां अखां दे नाल लेकिन फिर भी एक गल भुलांदे आं और यकीन करदे आं संसार सच है निरंकार झूठ है। साहिब कहिंदे नहीं ये महल माड़ियां झूठ ने ये मंडप ये शामियाने ये चंदोए तने हुए झूठ ने इन्हां विच बैठण वाले वह भी मिथ्या ने वह भी झूठ है। कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनण हार सोयना जिहदी चमक दमक आदि काल तो मनुख नूं अपनी तरफ खिंचदी रही है दरअसल कंचन का ही बहुत गहरे तल विच मनुख ते प्रभाव रहा है। मनुख की लंबी चौड़ी भटकना कंचन करके ही है सोने करके है। साहिब कहिंदे ने ये सोना यह भी झूठ है यह भी मिथ्या है यदि चमक भी शरीर भी नहीं रही और यह भी गल जाएगा ढल जाएगा अज है कल नहीं। इस सोने दे गहने कूड़ ने झूठ ने और चांदी यह भी झूठ है। चांदी के सोने के जड़े गहने पाण वाले ने साहिब कहन वह भी कूड़ है कूड़ पहनण हार भी अज है ते कल नहीं। दरअसल मनुख दे अंदर आद काल तो यह भाव बनया है कि मैं सुंदर दिखाई देवा कि लोकी मैनू सुंदर मनन इस वास्ते हार शिंगार का इत्थों जन्म होया है। लेकिन यह मनुख दे अंदर हीण भाव है इसने अपने आप नूं करूप क्यों महसूस किया। दरअसल करूपता ते अंदर सी शिंगार इसने बाहर किया मलनता ते अंदर सी सफाई इसने बाहर की थी पैड़ापन ते अंदर सी संवारिया शिंगारिया इसने बाहर। एक आलम दा कहना है हजारा रायशें सदके हैं उसकी सादावाजी पर नहीं मोहताज जेवर इल्म अकल ने जिसको सवारा है। जिन्हों ज्ञान ने जिन्हों इल्म ने संवारिया है शिंगारिया है उन्हों किसे होर शिंगार की लोड़ नहीं उन्हों किसे होर गहणियां की लोड़ नहीं। पुरुष नालों ये हीण भाव ज्यादा नारी के अंदर है इस वास्ते उसका बहुत सारा समा ते उसका बहुत सारा धन उसकी बहुत सारी शक्ति हार शिंगार दे ही बतीत हो जाती है। कभी बहौर झात मारी है मोर कितना खूबसूरत है हंस कितना खूबसूरत है मछलियां उत्ते कितनी सोहनी चित्रकारी है जंगली जानवर पशु कितने सोहने ढंग नाल अकाल पुरख ने उन्होंने संवारे है शिंगारे है। दरअसल इस तरह का स्वप्न अकाल पुरख ने मनुख नूं भी दिता है लेकिन वह अंदरूनी है महान है उसकी तरफ इसने कभी झात नहीं मारी उसकी तरफ इसने कभी देखा नहीं। इस वास्ते इसका समा इसकी शक्ति बाहर के स्वप्न विच नष्ट होती रही है। तो साहिब कहिंदे ने कि सोना ये चांदी और सोने ते चांदी दे बने हुए ये गहने और इन्हां नूं पहनण वाले साहिब कहिंदे सब कूड़ है सब मिथ्या है। कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार इसकी जो अपार रूप है, अत्यंत सुंदरता है, काया दी और खास करके कपड़िया दे नाल होर सुहावनी है, होर सुंदर है। साहब कहने काया भी कूर, ये कपड़े भी कूर, और ये जड़ी अपार सुंदरता है ये भी मिथ्या है। देखदिया देखदिया ही मनुख का जोबन ढल जाता है, देखदिया देखदिया ही मनुख अपनी अखा नाल ही वेख लेंदा है सुंदरता मेरी नष्ट हो गई, वो तिखे नैन नहीं गए, वो सुराही जैसी गर्दन नहीं रही, वो मृग नैन नहीं रहे। सहजे सहजे इंद्रियां दी चमक दमक रुखसत हो रही है, लेकिन रुखसत हो रही है मनुख फिर भी नहीं मनता, पूर्ण तौर पर यकीन फिर भी नहीं आऊंगा कि सारे दा सारा जीवन ही रुखसत हो जाएगा, एक ढलदी हुई छाया है और ढल जाएगी। मनुख इसनु सदेवी मन लेंदा है, अमर मन लेंदा है। कहंदे ने भगत कबीर जी दे डेरे एक ऐसी पनहारी सी जो सारा दिन आए हुए यात्रुओं नु भगत जना नु पानी पिलांदी सी, तन दे खद्दड़ दा लिबास लेकिन ओ भी लीरां लीरां चीचड़े बिल्कुल। भगत कबीर जी दे चेले एक दिन गंगा तट तो होके आए, उस दिन सिकंदर लोधी दी बेगम हिंदू यात्रुओं नू वेखण लई गंगा दे तट ते आई सी, सजे होया रथ और हार श्रृंगार नाल संवारी हुई ए बेगम, बड़ा कीमती उसका लिबास चेले वेखदे ते दंग रह गए। इतना कीमती लिबास, लिबास दे च ही हीरे जड़त ने, मोती जड़त ने, नीलम पन्ने जड़त ने, मखमली लिबास कबीर दे चेले कबीर कोल आके गिला करदे ने कि ईश्वर बेमिसाफियां करदा है, जो सारा दिन पानी पिलांदी है, लोकां दी प्यास मिटांदी है, आए हुए यात्रुओं का हर तरीके नाल ख्याल रखती है, और जो सारा दिन भजन करती है भावना नाल, उहदे कपड़े लीरां लीरां और खद्दर दे, जो पता नहीं खुदा दा नां लैंदी भी है कि नहीं, उहदे कपड़े इतने कीमती, उसका लिबास अत्यंत सुंदर। उस वक्त कबीर कहने ने नहीं, ये जो पानी पिलांदी है, ये जो सारा दिन सतनाम की धुन दे चलीन रहती है, ये कपड़े कीमती ने, महान ने। चेले कहंदे ने जिहड़े कपड़े असी देखे ने, जे किधरे तुसी देखदे तां कह उठदे वाकई ये कपड़े महान ने, ये रूप महान है। उत्थे भगत कबीर दो श्लोक उचारण करदे ने जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच दर्ज ने, कबीर हैंगे बाहन सघन घन छत्रपति की नार, तासो पटंतर ना पुजे हर जन की पनिहार। मैं मनदा उस बेगम दे घर देच हाथी ने, घोड़े ने, कंचन है, सोना चांदी है, बहुत सुंदर महल ने, और उदे कपड़े मखमली ने, लेकिन मैं फिर भी कहना तासो पटंतर ना पुजे हर जन की पनिहार। ये हरी दे जना दी जड़ी पनहारी है, जो सारा दिन पानी पिलांदी है हरी दे जना नू, भगता नू, इहदे कपड़िया दे सामने उस बेगम दे कपड़े तुच्छ ने, कुछ भी नहीं। इन्हां कपड़िया नाल उन्हां दा की मुकाबला, ये कपड़े महान ने। तां चेले सारे बोल पए, भगत जी वो मखमली लिबास है, उहदे च हीरे ते मोती जड़त ने। उस वक्त कबीर समझांदे ने भी गल सुन, कबीर निरप नारी क्यों निंदीए, क्यों हर चेरी को मां। मैं राजे दी स्त्री दी निंदा क्यों कीती, हरी दी उजड़ी चेरी है, उजड़ी पनहारी है, मैं उसनु इतना वड्डा मान क्यों दिता है कि बेगम इस पनहारी दे चरणा दी खाक भी नहीं, उहदे कपड़े इहदे कपड़िया दे सामने तुच्छ ने, उहदा रूप इहदे सामने कुछ भी नहीं। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवारे बिखरे को ए सिमरे हरी नाम। इहदे फटे पुराने कपड़िया दे च हरी वसदा है, हरी दा चिंतन है, हरी दा सिमरन है, उहदे मखमली लिबास दे संसारिक वासनावां ने कृष्ण कामना जेड़ा लिबास कामना नूं वधावे मैं उसकी महिमा नहीं गायन कर सकता। मैं ते उस लिबास की महिमा करांगा जिहदे चों राम की धुन निकले जिहदे प्रभु की धुन निकले। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का भी फरमान है बाबा होर पहनन खुशी खुआर जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। वो पहना ते खजल खुआरी है जिहदे नाल वासना वधे। कुछ ऐसा खाना भी है जिहदे नाल वासना वधदी है कुछ ऐसा पहनना भी है जिहदे नाल संसारिक वासना वधदी है। इस वास्ते गुरमत कहिंदी है ऐसा खाओ जिहदे नाल वासना सीमा विच रहे ऐसा पहनो जिहदे नाल कामना सीमित रहे। तो भगत कबीर कहने निरप नारी क्यों निंदी है मैं इतनी वड्डी नारी बेगम की निंदा क्यों कर छड़ी उन्हों क्यों छुटे आया। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी को मान ओ मांग सवारे बिखे को ए सिमरे हरि नाम। तो साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अज दे पावन पवित्र श्लोक विच फरमान पे करते ने कि कपड़ ए सुंदर काया ए अपार रूप सब मिथ्या सब झूठ है। कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपा कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खा रिश्ते ते होर बहुत सारे ने पर मूल रिश्ता है मियां बीबी का। इस तो ही धियां पुत्र इस तो ही अगां लंबा चौड़ा परिवार और यही अगां चल के दादी दादा वरस के ए मूल रिश्ता है संसार का जिदे नाल संसार फैलता है। तो महाराज कहंदे ने ए मियां ए बीवी ए पति ए पत्नी ए रिश्ते भी झूठे। भगत कबीर का एक बड़ा सुंदर शब्द है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च कहंदे ने खड्डी दे बैठ के कपड़ा बुन रहे सन ते लोही किधरे भोजन ले आई ते खड्डी ते बैठे बैठे भोजन छकन लग पए। किसी तारकक ने तर्क कर दिती भी जिस बंदे नूं सुची थां ते बैठ के भोजन छकण दी जाच नहीं ओ रब नाल की जुड़ेगा ते रब दी की गल करेगा। कबीर उत्थे कहिंदे ने कहो पंडित सूचा कहुं थां जहां बैस हो भोजन खां। तू मैनू दस सुची जगह केड़ी है जिथे बैठ के मैं भोजन छकां जिथे बैठ के मैं प्रसाद छकां। माता झूठी पिता भी झूठा झूठे ही फल लागे आवे झूठे जाए भी झूठे झूठे मरे अभागे। कहो पंडित सोचा कौन था जहां बैस हो भोजन खां जिहबा झूठी बोलत झूठा करन नेत सब झूठे इंद्री की झूठ उतरस नाई ब्रह्म अगन के लूटे। जबान झूठी है मिथ्या बोल रही है अखां झूठियां ने मिथ्या वेख रही ने कन झूठे ने मिथ्या सुन रहे ने पैर झूठे ने मिथ्या मार्ग पे चल रहे ने हाथ झूठे ने मिथ्या कर्म कर रहे ने सब कुछ ते मिथ्या है सब कुछ ते झूठ है। जेहबा झूठी बोलत झूठा करन नेत्र सब झूठे इंद्रिय की झूठ उतरस नाई ब्रह्म अगन के लूटे। और अगां चल के भगत कबीर कहंदे ने कि जिस तुसी आखो गोबर लेपा करिए झाड़ू बुहारी देइए ते जगह पवित्र हो जाती उपर गंगा जली छिड़की है ता आप कहने ने गोबर झूठा चौका झूठा झूठी दीनी कारा कहो कबीर तेई नर सूचे साची परी विचार। वही सुचे ने वही पवित्र ने जिन्हां दे कोल सच दे विचार है जो सच नूं सोचदे ने सच नूं बोलदे ने सच नूं सुनदे ने सच नूं वेखदे ने सच नाल जुड़दे ने बस वही सुचे ने वही पावन ने वही महान ने। तो साहिब इत्थे कहिंदे ने कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए थार। ए बीवी दा बीवी होना ते मियां दा मियां होना पुरुष दा पुरुष होना नारी दा नारी होना और ए रिश्ते पति पत्नी दे साहिब कहिंदे ने झूठे ने एवें खप के खुआर होंदे आखिर खुआर ही होंदे। और इन्हां रिश्तियां विच अज तक बंदे नूं सिवाय फारी थे और लभ्या ही की है। तो साहिब कहने ने कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार। झूठे दा झूठे नाले प्यार बजे, इस झूठे नू झूठ ही चंगा लगया, इस कूड़े नू कूड़ ही चंगा लगया, ते भूल गया ओ करतार जो सच है, जो सदैवी है, जो हमेशा है। पिंड ने सजाती मेल होंदा, कूड़ दा कूड़ नाल ही जा मेल होंदा, सच दा सच नाल ही जाल मेल होंदा। तो महाराज कहंदे ने कूड़ कूड़े नेहो लगा, इस कूड़े दा कूड़े नाल ही नेहो जाके लगया, ए कूड़ा कूड़े नाल ही जाके जुड़िया, ते विसरिया करतार भूल गया सच, भूल गया करतार नू, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलना, सारा जगत चलायमान है, किस नाल दोस्ती करेगा, किस नाल रिश्ता जो है जोड़ेगा, सब कुछ ते जा रहा है, ते जे सब कुछ जा रहा है तो तेरी दोस्ती भी जाएगी, तेरी मित्रता भी जाएगी। कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर, पर कूड़ ते जीवा नू शहद की तरह लगता है, इते महान मिठा करके लगता है। इस वास्ते कूड़ की मिठास पूरा दे पूर डुब गए, पूरा दे पूर गर्क हो गए, एक दो नहीं पूरा दे पूर गर्क हो गए, कुटुंब दे कुटुंब गर्क हो गए, संसार दे सारे जी इस कूड़ की शहद फस के रह गए, डुब के रह गए। नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ों कूर। सतगुरु देव जी महाराज प्रमाण करते हैं, हे प्रभु मेरी ये बेनती है, मेरी ये जोड़ी है कि तेथों बिना सब झूठ है, तेथों बिना सब कूड़ है, तू ही सच है, और जो तेरे मार्ग ते चले वही सच्यार होए, जो तेरे नाल जुड़े वही सच्यार होए, जो संसार नाल जुड़े वो ते कुड़ियार हो गए। जितना कोई संसारी उतना कुड़ियार है, और जितना कोई करतारी है उतना ही सच्यार है। ईश्वर नाल जुड़ना दरअसल सच होना है, संसार नाल जुड़ना कूड़ होना है, ते कूड़ दा भी अपना प्रभाव है, क्योंकि ए कूड़ उस सच दी छाया है, तो सच महान है, उदी छाया भी अपना प्रभाव पाती है, उदी छाया देवी अपनी शक्ति है। महामाई ताकी है छाया, इस छाया तो उच्चे उठ के जो उस प्रभु नाल जुड़ता है वही महान है।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singhsabha2@gmail.com, singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

सब नौगल समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे,

नानक हुकमी आ भजा। तीरथ तप दया दत्त दान जे को पावे तिलका मान, सुनया मनया मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत ना होए। सुवासात बाणी ब्रह्माओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सवेला वक्त कवन, कवन सिद कवन वार, कवन सिरुति महा कवन, जितो आकार। वेल न पाइया पंडती जे हुआ लेख पुराण, भगत न पायो कादियां जे लिखण लेख पुराण। थित वार न जोगी जाने, रुत माह न कोई, जा करता सिर ठीक हो साजे, आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सलाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखण सब को आख है, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहेब वड्डी नाही कीता जा कह होवै, नानक जी को आपो जाना, अग गया न सोवै। पातालां पाताल रख आकाश आया गास, उड़क उड़क पाल थके, वेद कहन कवात। सहस अठारह कनक देवा, सलूक कधात, लेखा हुए तो लिखी है, लेखा हुए विनाश। नानक वड्डा आखी है, आपे जाने आप। साला ही सलाह तीसरत न पाईया, नदियां आता बह पवै, समुद न जानी है। समुद सा सुल्तान गिरहा, से ती माल तन, कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसरै। अंत न सिवती कहण ना अंतो, अंत न करणा देण ना अंतो, अंत न वेखण सुनण ना अंतो, अंत न जापै क्या मन मंत। अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारा भार, अंत कारणु केते बिल लाही, ताके अंत न पाए जाए। एह अंत न जाणै कोए, बहुता कही है बहुता होए। वड्डा साहिब ऊचा थाउ, ऊचे उपर ऊचा नाउ। हे बड़ ऊचा होवै कोए, ते सूचे को जाणै सोए, जे बड़े आप जाणै आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखया न जाए, बड़ा दाता तिल न तमाए, किते मंगै जूदा पार, कितिया गणत नहीं विचार। किते खप तुट है बेकार, किते लै लै मुकर पाए, किते मूर्ख खाई खाए, कितिया दुख भूख सदमार। ए पेदात तेरी दातार, बंद कलाशी पाणै होए, हो राख न सकै कोए। जे को खाए क आखण पाए, हो जाने जे तिया मुँह खाए, आपे जाने आपे दे, आखे से पे कई के। जिसनो बख्शे सत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। अमुल गुण मुल व्यापार, अमुल व्यापारी अमुल भंडार, मुला बह मुल लै जाहे, मुल पाई मुला समाहे। अमुल धर्म मुल दीवान, मुल तुल मुल प्रवान, अमुल बख्शीस मुल निशान, अमुल कर्म मुल फरमान। अमुल बख्शीस मुल निशान, अमुल कर्म मुल फरमान, मुल मुल आख न जाए, आख आख रहे लबलाई। आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े करे बख्याण, आख है ब्रह्मे आख अंद, आख है गोपी तय गोविंद। आख ईश्वर आख सिद्ध, आख गीते गीते बुद्ध, आख दानव आख देव, आख है सुर नार मुन जन सेव। किते आख है आखण पाहे, किते कह कह ओ छुट जाहे, ते किते होर करहे ता आख न सकै कई के। जेवड़ पावै तेवड़ होए, नानक जाने सचा सोए। जे को आख भूल बिगाड़, तां लिखी असर गावर अंगावर। सोदार केहा सुकर केहा, जित बै सर्ब संभाले, वाजे नाद अनेक संखा, केते वावनारे। केते राग परी स्यों कही अन, केते गावन हारी। गावे तुन पौन पाणी बै संतर, गावे राजा धर्म द्वारी। गावे हैं चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारी। गावे हैं ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सवारी। गावे हैं इंद्र दासन बैठे, देवते अंदर नाले। गावे हैं सद समाधि अंदर, गावन साध विचारी। गावन जति सदी संतोखी, गावे वीर करारी। गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। गावे हैं मोहनिया मन मोहन, सुरगा मश पयाले। गावन रतन पाए तेरे, अड़सठ तीर्थ नाले।
गावहें जोत महाबल सूरा गावें खाणी चारी गावहें खंड मंडल वर पंडाल कर कर रखे धारी सही तुदन गावहें जो तुद पावन औरते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या बिचारी सोई सोई सदा सच ओ साहेब साचा साची नाई है पी हो सी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर ओ जनसी माया जिन ओ पाई कर कर विखै गीता अपना जब तस दी बढ़ियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह श्याम पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शरंबत चोड़ी ध्यान की करें बिभूत गिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश तस आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण गड़गड़ वाज नाद आप नाथ नाथी सब जय की दिस देवरा साध संजोग वियोग दे कार चलावै लेखे आवै भाग आदेश तस आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जूत व्याई तिन चले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जब तस भावै तब जलावै जो वह फुरमान ओह वेखै उन्ना नजर न आवै बहुता ए बडाण आदेश तस आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो किछ पास एका वार कर कर वेखै सरजन हार नानक सचे की साची कार आदेश तिस आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी पौ लख हो है लख हो वै लख वीस लख लख गिणा की है एक नाम जगदीश ए तरह पद पवड़ियां चढ़ी आवे अकीस सुन गला आकाश की गीटा आई रीस नानक नदरी पाई है गुड़ी गुड़ा ठीस आखण जोर च पैन है जोर जोर न मंगण देण ना जोर जोर न जीवन मरण ना जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुटती ज्ञान विचार जोर न जगती सुट संसार जिस हथ जोर कर विखै सोए नानक उत्तम नीज न कोए राती रुति स्थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती साप रखी धर्मसाल तिस विच जी जगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार जिथे सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथ पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वह संतर केते कान महेश केते ब्रह्म गाढ़ दगड़ी है रूप रंग के वेश केतियां करम भूमि मिर केते केते तू उपदेश केते अंध जंद सूर केते केते मंडल देश केते देवदान मुन केते केते रतन संबंध केतियां खाणी केतियां वाणी केते बात नरिंद केतियां सुरती सेव केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड व्यंगन वचन तिथे नाद विनोद कोट आनंद शर्म खंड की बाणी रूप जिथे घाट घड़ी है बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाए जे को कह पिछै पछताए तिथे घड़ी सुरत मत मन बुद्ध जिथे घड़ी है सुरत दंकी शुद्ध कर्मखंड की बाणी जोर जिथे और न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहे अपार पूर जिथे सीधो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाए ना ओह मरहे न ठग जाहि जिनके राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै कहलो करहे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर पंड जे को कथै तंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तीर जसनिहार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला गणतपताओ पांडा पाओ अमृत तटाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिनको नजर करम तिनकार नानक नदरी नजर निहाल सलोक
पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महात दिवस रात दुदाई दाया खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वच धर्म हदूर करमी आपो अपनी के निड़ के दूर जिन्हें नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मखुजले केती छुट्टी नाल जिन्हें नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मखुजले केती छुट्टी नाल सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जाप साहिब एको ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपै शंत प्रसाद चक्कर जिहे नर बरन जात हर पात नहन जेहे रूप रंग हर रेख पेख को कह न सकत कहे अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित ओज कहे जय कोट इंद्रंद्रा अनसा सहन गण जय तिर पवन महीप सुर नार्य सोर नेत नेत बण तृण कह तो तव सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत समत भुजंग पर्यात छंद नमस्तंग अकाली नमस्तंग कृपाली नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाई नमस्तंग अजाई नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग धर्मंग नमस्तंग नामंग नमस्तंग तामंग नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग बाहि नमस्तंग अटाहि नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग छेदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे नमस्तंग सोई कह नमस्तंग अनेक नमस्तंग भूते नमस्तंग झूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निरदेशे नमस्तंग निरभेषे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरधाते नमस्तंग निरघाते नमस्तंग निरतुते नमस्तंग भूते नमस्तंग लोके नमस्तंग शोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग तापे नमस्तंग त्रमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग गाहि नमस्तंग बाहि नमस्तंग त्रवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग पंगे नमस्तंग गम्य नमस्तास्तरम्य नमस्तंग जलाश्री नमस्तंग निराश्री नमस्तंग जाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग मजबे नमस्तस्तजबे अधिष्टंग देशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग निर्धामे नमस्तंग निर्भामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवाय नमस्तंग अपेवाय नमस्तंग जनमे नमस्तंग सुभनमे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले नमस्तस्तु दयाले नमस्तंग वरणे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमो वस्ता बंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्भाक्य नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महांते नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी शंब तव प्रसाद अरूप है अनूप है लव अजू है पू है लेख है बेख है नाम है अकाम है अदे है अपे है जीत है पीत है त्रमान निदान त्रिवर्ग है सर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है वर्ण है भूत है वर्ण है अगंज है पांझा चूज है चांझ है अमीक है रफीक है तंद है बंद है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है जह है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है जम्भ है अलू अपूत है सूत है अलोक है अशोक है अकर्म है परम है अजीत है अपीत है अबहाय गहाय मान निदान अनेक है फ्रेक है भुजंग प्रयात शम नमो सर्वमान्य समाप्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो कल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथि नरसंगी परमाथि नमो पान पाने नमो मन माने
नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो दान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो भाद भादे अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे परपंगी परमाते समाधि भभूते कलंकंग बिनाने कलंकेश रूपे नमो राजराजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सद्धे नमो राजराजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित्यनारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाशांग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमो संघनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता दूरदर्दंग गंगोघर्ता परं परं परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदीय पेदीय नामंग कामंग समस्तो प्राजी समस्तास्तुतामंग तेरा जोर्जा श्री संग जले हैं थले हैं पीता भे हैं प्रभु अजुआ दे सह पे सहे पिजंग पर्याद शंब अगाध्यवादी आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति नजाने नमा तुंग नरनाथी नमा तुंग परमाथे नमा तुंग गंजे नमा तुंग पंजे नमास्तुंग काले नमास्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो शाशाहे नमो महामाये नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सर्वरोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो चंद्रयंत्रंग नमो सर्वदृष्टंग नमो सर्वकरिष्टंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समातं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे गुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदि सिद्धं निवासी चर्पण शांत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्म सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं बाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत तव प्रसाद आद रूप नाद मूर्त जोन बुरख पार सर्व मंत्र मान देवा पेवाद उदार सर्व बालक सर्व कालक सर्व गोपन काल जत्र तत्र राजीव दूसर प्रसाद नाम ठावना जा करु ब्रंग नरेखो आद ब्रुख

बहुत बहुत आए ब्रह्मत प्रवाह सुधाए सदा गुण स्वरूपा भेदी अनूप है समाज तो ब्राज है सदा सर्व साज है समाज सर्व सलाम है सदा भल काम है निर्वाद स्वरूप है गाद है अनूप है ओवंगाद रूप है ना स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकामे त्रिवर्गं त्रिबाध्य गंजे गाधे सुभंग सर्वभाग्य सुसर्वान राके त्रिभुक्त स्वरूप है सजय शूद है कि नरकं प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रज्योत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रज्योत अनूप है चाचरी शंब अपंग है नंग है बेखा लेख है परम है कर्म है नाद है जगाद है अजय है भय है भूत है तूत है नाश है उदास है दंद है बंद है अभगत है विरगत है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है दिख है अलिख है पीख है टाह गाय संभ है गम है नील है नाद है नित सुनित जात है जात है चरपट छंद तव प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसा बल शांत तक प्रसाद नमो नरक नाशिष दैव प्रकाश अनंगं स्वरूपे अभंगं बभूते परमाथं परमाथि सदा सर्व साथे एकाद स्वरूपे निर्वाद बभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं श्रीकं मितं ही कहें सदैव प्रवाहे जय अजय भगवती शांत तक प्रसाद कि जा हरजूर है कि हाजर हजूर है मेसल सलाम है समाज तिलकलाम है कि सब दिमाग है कि उसने चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी दहेंद है कि राज करहेंद है करीमल कमाल है कि उसने जमाल है करीमल गराज है करीमल निवाज है हरिफुल ठिकान है रासल बकान है कलंकंग प्रणास है समाज तुल निवास है अगंजल करीम है रजाय करीम है समाज तुल जवा है कि साहेब गिरा है कि नरकंग प्रणास है बैतुल निवास है के सर्वलगवान है मेसुलगवान है तमाम तमीज है समातल अजीज है पारंग परमेश है समातल अधीश है तेसल अलेख है मेसुल पेख है जमीनो जमा है मी कुल मा है क्रीमल कमाल है किचरो जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो भूत है कि मितो बसा है कि आत्म प्रवाह है कि अचलंग नांग है कि मितो पांग है मधुपार शांत दव प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गर्म दाम हर भर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंडू भर नर मांडू अनुभव नाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल धर्म दाम अंश जी अंग आसन पंग उपमा पारगात्मित उदार जल फल मांडो देश विश पांडव जल फल महंत देश विश बेअंत अनपवन आश त्रत धर तरास अजन बाह कैसदा अंकार आदि कथनी अनाद कलखंड काल गुरवर काल कर कर प्रणाम जरण नाम अंश जगात अज जन वात अंजन जगात अनरंज वात अंडुट भंडार अंडुट पार अड़ीठ धर्म अदरीठ कर्म अन प्रणनांत दाता महंत हर भूल मना छंद दव प्रसाद करुणाल्या है अर्काल्या है कलकंडन है मैं मंडन है जगदेश्वर है कल परमेश्वर है कल कारण है सर्वभारण है धरत के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगदीश्वर है ब्रह्मंड है कलखंड है परते पर है करुणा कर है अजप जप है थप थप है अकृता कृत है अमृत अमृत है अमृत अमृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत अमृत अमृत है नर नायक है कल गायक है विश्वपुर है करुणालय है मृप नायक है सर्वायक है पवभंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलन कृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्म है आत्म बास है जस के जास है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग धाम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे
नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूज्य नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादिं विभूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगीय नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगीय कामे एक अक्षरी शंभ अजय अल पैप पुवजुवनाश काश गंज पंज लख पख काल दयाल लेख पेख अनाम का

भोग जपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जो अंतरलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजा दिक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पात अंत फसे जम पास भरेंगे। जे नर श्री पद के पर स्वयं पाग ते नर फिर नदी तरेंगे। कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठो भग ध्यान लगायो। न हाथ फिर लिये सात समुद्र ने लोग गए ऊपर लोग गवायो। बास के उपख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैठ बतायो। साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम की हो तनि प्रभु पायो। काहू लै पान पूज धरे सर काहू लै लिंग करे लटकायो। काहू लख्यो हर बची दिशा मैं काहू पछा को सी।

0: प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम स्लिप तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हैं कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नू पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

0: जो महाबल सुनले नानक में पाओ
1: नानक सुनर पाओ निरंकार हो कीते राम रवाल के कीतियां कहानियां कीते बिच विचार कीते नते मंगते गुरमुख पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कडे बाजार राजे राजे रानियां बोले उत्ता लख तकियां के मुंगड़े लख तकियां के हा जित तन पाई नाम का से तन हो विचार ज्ञान ना गले पूरिए कथन कड़ा सार करम ले तां पाई है

जन जन प्रणाम पंद्रह बंद पाए सोए पया कृष्ण से साव कोई नच नच हसा चला सिर नंदा सिद्ध न होए नचन कुदर मन का चाओ नाम जिन मन पाओ तिन मन पाओ।

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण क्षत्रिय शब्दं शूद शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो नाम संकादास है सुनि रंजन देव कृष्ण कर देवा देव देवता आत्मा आत्मा।

0: सतयुग संतोख का धर्म गैर स्वभाव त्रिचरा जते का जोर गैर स्वभाव पर तप का सत गैर स्वभाव काल युग रथगन का पूरा गैर स्वभाव महला पहला
1: काम तरह से संपन्न

सेवा करे छुमराज उगम नियहु में प्रमाणता उसमें का मैल पाजे उसमें पावे सो प्रेम मनोष दिया सो फल पाए थी राम पहला जाए।

पदि सिमर सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन महे मिटावो सिमरो जास विसंबर एक नाम जपत अगनते अनेक

दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ विघ्न न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभ कै सिमरन पौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध।

सिमरन सब कुछ तुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ कौ सिमरै से तनवंते, प्रभ कौ सिमरै से पतवंते। प्रभ कौ सिमरै से जन परवान, प्रभ कौ सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ कौ सिमरै से वे मोहताजे, प्रभ कौ सिमरै से सर्व के राजे। प्रभ कौ सिमरै से सुखवासी, प्रभ कौ सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ कौ सिमरै से पर उपकारी, प्रभ कौ सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभ कौ सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ कौ सिमरै तिन सूख बिहावै। प्रभ कौ सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ कौ सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभ कौ सिमरै तिन अनंत कनेरे, प्रभ कौ सिमरै बस

प्रभु कै सिमरन सहज सुमानी, प्रभु कै सिमरन निहित लयासन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत ना पार। सिमरह से

तै हर नाम संकोच सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परमगत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तै पार पराही। अनक विघ्न जह आए संघार, हर का नाम तत्काल उधार है। अनक

हर नाम जपत कब परे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कष्ट

कनक असव है वर भूमि दा। न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम अति साधन। निमक निमक कर सीध कटावे, तो पी हो मैं मैर ना जावे। हर के नाम सम सर कष्ट नाहि, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू न बिख्या टरै। जल धोवै बहुत ए अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उतरे पतित बहुमूच। बहुत सियाणप जम का भव व्यापै, अनक जतन कर कृष्ण न त्रापै। भेक अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै। छूटत नाही ऊब पयाल, मोहे व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जम डान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम रते सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग ए होमे शोरै। जे को जन्म मरण से डरै, साध गुणा की सरणी परे। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक का कह बल बल जाता। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जा।

अवतेरो मां सगल कटा को देव दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी पुस्तक तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल वाणी में अमृत वाणी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे घट वसे हर नाम सलोक।

अष्टपदी रमैया के गुणचेत पुरानी कमन मूल ते कमन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अगन मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध पर जोगन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साक सैन मुख अप्याव बैठ पौदैन इहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लेहु तो नानक सीजै जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसै सुत प्रात नीत बनता संग हसै जे प्रसाद पी वह शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जे प्रसाद भोगह सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नानक काट लेहु प्रव्यापे

जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान इसे जिसारे मुक्त फजान सदा सदा।

झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर माने जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए किसका श्रम करे संग सहाई किस पर हरे चंदन ले पुतारे धोए घर धब प्रीत पसम संग होए अंध कूप मह पतत बिकरा नान काड लेहु प्रभु दयाल करतूत पशु की मांस जा लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेट अंतर मल माया छपस नाहे कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोक स्वान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पात्र कैसे तरे अथा ज्ञान के अंतर बसे प्रव्याप नानक तेजन सहज समाप सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह लेहो ओढ़ निभावे कहाँ बुझारत बुझे डोरा नित कहिए तो समझे पूरा कहाँ विसन पद गावे गुंग जतन करे तो भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत कुहा उस गवन करदार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाई सो आवे ना चीत जो बैराई ता सो प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसे अनंत केल माया रंग रसे दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह याहू जुगत विहाने।

अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्द पोहरे, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपार, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वार, मिथ्या चरण पर विकार कौतावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे।

आए सो सेवक जिस कृपा करी निमुख निमुख जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह

अवर लुभावे। जेह प्रसाद सुख से सोई जय, मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जेह प्रसाद तुझ सब को मन है, मुख ताको जस रसन बखान है। जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावे, नानक पत सेती कर जावे। जेह प्रसाद अरोग कंचन देही, लिव लावो इस राम स्नेही। जेह प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जेह प्रसाद तेरे सगल चिद्र ढाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके। जेह प्रसाद तुझको ना पहुँचै, मन सास सास तिमरहो प्रभु चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ता की भगत करे। जे प्रसाद अपूकन पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद असवहस्त असवारी, मन तिस सब को कबू ना विस्तारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना, राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिसहत्याई। तिसहत्याई जो एक अलग है, इहा उहा नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करै पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ कौ सास सास सितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी

अचरज कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटे अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग

भरपूर। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते ऊंची, साध की शोभा।

जैसे महल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश। जैसे सर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान। ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सबसे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पै, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी सीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी से कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी।

का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख

ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या ना जाए अदा कर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की नित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक ओ अपर सबल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पर त्रय रूप न पेख नेतर, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब से जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद दिख्या पर हरे, मन की वासना मन ते तरह। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। बैसनो सोजस ऊपर सो प्रसन्न, विषन की माया ते होए भिन्न। कर्म करत होवे ने कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संगराचे। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक ओ बैसनो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मन ते बिन से सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मन खोवे, इस भगवती कीमत उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पय बिशन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबोधे, राम नाम आत्म महसूदे। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन न आवे। वेद पुराण से

जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतारे, पश प्रेत मुगध पात्र पौतारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान, काहू जुगत कितै ना पाइय धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुरक।

सो जी पर सगल संगयात्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे। तैसा हरक तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं व्यो। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजा जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखे तैसा तिन नाओ आपे करन करावन जोग।

अष्टपदी। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट मन भर में उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट विस्तर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब काव विचार है, कई कोट नवतम नाम त्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरय, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी।

कोट पवन पानी वैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर नखतर कई कोट देव दानव इंद्र सरस्वतर सगल समग्री अपने सूत धार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस तामस तातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास कई कोट किए रतन समुद्र

आज सबते निरह सब हूते दूर नानक आप अलिप तरया परपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मर कई कोट बहजोनी फिर कई कोट बैठत ही खाए कई कोट काले थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किस प्रभ कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभ को कहो जनते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कोट

कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा

संग ज्यों जल में जलिया है खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुरबान। श्लोक सुखी बसे

वह लश्कर मान ऊपर करे आस, पल भीतरता का होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, किन में होए जाए पसमंत, किसे न वदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे।

तगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगह कह कैसे गवे आप को जो भला कहावे इससे भलाई निकट ना आवे सर्व क्रियां का मन होए कहो नानक ता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इस को सुख नाही होए जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तार को बैरी नीत तब लग निचलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश

जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुरप्रसाद किने वखियानी, सच सच सच सब कीना कोट मदे किने विरले चीना। भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी सरवण बख्यानी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक, संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। कष्ट परी संत के दुखन यार जा कटै, संत के दुखन जमते नहीं छुटै, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे ना कोई, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जून लवै, संतन कै दुखन सर्प जून पाए, संत कै दुखन त्रिगत जून किरमाए, संतन कै दुखन कृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब कुशलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाऊं को नाहे, नानक संत पावे ताऊं एक ही तत पाहे। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक कौ सर्व रोग, संत के निंदक कौ सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लग गए, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख

ते टूटे, संत का दुखी कितै काज ना पहुंचे। संत के दुखी पौ ध्यान परमाइय, संत का दुखी उजड़ पाइय, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक पी लोथा। संत के दुखी की जट किसना है, आपन विद्या पे ही काहे। संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे ता लै उबार। संत का दुखी क्यों बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़पड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुही पया, नानक ज्योतिष भावै सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी

एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाय। अष्टपति मानुख की टेक बिरती सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बहोर न तिछना लग आए। मारे राखे एक आप, मानुख तै किसना ही हाथ, किसका हुक्म बूझ सुख होए, किसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक विघन न लागे कोई।

सत्संग चरण चलो वार गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सरवण हर कथा हर दरगह नानक पूजन मथा बड़ भागी तेजन जगम।

आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल में आप अनक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मंड अलख अतिव पुरख प्रताप पाप छपाए तनानक जा जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विस्

तिन पुरख कौ उत्तम कर्मा। जो किस करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसे हर संग। सहज सुपाए होवे सो होई, करने हार पछाने सोई। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिससे उपजे तिस माहे समाए, कोई सुख निदान उन्हों बने आए। आप सुखो आप दीनु मान, नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जाननहार। जाके सिमरन उदरिए,

रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाश की प्रव्याप्या आपन किया कछु न होए, जे सौ प्राणी लोचै पोए इस बिन नाही तेरा किछु काम, गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोहै, प्रभ की जोत सकल घट तो है, तनवंता होए क्या को गर्व है, जन सब इस का दिया गर्व है।

धन धन कहे सब कोए, मुख पूजल हर दर गै सोए। इहो वापार विरला वापार है, नानक तां कह सद बलिहार है। चरण साध पे तोहे तोहे पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की धूर करो इशना, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वडभागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। अनक विघन के साधु राखै, हर गुण गाय अमृत रस चाखै। कोट गही संतै दर आया, सर्व सूख नानक ते पाया। मृतक को जी वालन हार, भूखे को देवताधार। सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लेना पाहे।

सब से ऊच निर्मल एह करनी, कर कृपा जिस को नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया, जां कै मन गुर की प्रतीत, किस जन आवै हर प्रभ चीत, भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जां कै हृदय एको होए, सच करनी सच ता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, साची दृष्ट

अष्टपदी अविनाशी प्रभु मन में राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिसते परे नाही किछ कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना।

एक करे एक रंग, नाना विध कीनू विस्तार, सब अविनाशी एक अंकार, नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहे पूर्ण सब ठाए, नाना विध कर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवे नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम कै संग उदरे सुन सरवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जा का सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की वाणी, सत पुरख सब महेश माणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत वचन साधु उपदेश, सत के जन जा कह हृदय प्रवेश, सत निरत बूझे जय कोए, नाम जब ता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्टि सो करने हार, अवर न बूझ करत बीचा, करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस भावे सो वरतिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बुझिया इस आया स्वाद, प्रभ कै रंग राच जन रहे, गुर कै वचन पदार्थ

पास तुम्हारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रखे ताकि गत मित कोई न लाके प्रभु के सेवक को ना पहुँचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक उसको सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी मैं कल रखे पसम करे लश्कर कोट लखे जिसका सांस न काटते आप ताँ को राकत दे कर हाथ मानस जतन करत बहु पांत इसके कर्तव्य वृथे जात मारे न रखे और न कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख वडाणी बार बार बार प्रभ जपिए पी अमृत इह मन तन तृपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही विष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृपताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सदका बोलो हो जस जेह बा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करे भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने स्यो रह सुमाए जो हो आहोवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने इसकी महिमा कौन बकानो इसका गुण कह एक न जानो आठ पहर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लेह मन तन अपना तिन जन देह जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता किस की शरण सर्व सुख पावे किस कै दर्श सब पाप मिटावे अवर स्यान सगली शाड किस जन की तू सेवा ला आमन जान न हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद तेरा श्लोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर किसका नाम किस कै संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतिपा सेवक को गुर सदा दया सिख की गुर दुर मत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार से हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वड भागी है सतगुर सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै गुर कै ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सहै आपस को कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सद ध्यावै मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कार्य विरास सेवा करत होए नेह कामी तिस को होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मह जन जन मह पार ब्रह्म एक है आप नहीं कष्ट परम सहस स्यान पलया ना जाइए नानक ऐसा गुर बड भागी पाइए सफल दर्शन एकत पुनीत परसत चरणगत निर्मल री भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की गर गय गवे सुन कर वचन करने आगाने मन संतोख आत्म पतिया ने
पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र अमृत दृष्ट एक हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिस लय मिला जिहवा एक पुस्तक अनेक सतपुरख पूरन विवेक काहू बोल ना पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने ना पाई अनक भगत बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै सद बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने एहो हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जा कै मन प्रगटे गुणदास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग ना लेप मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परमो दुख तै ते नासे तपत माहे ठांड वरताई आनंद भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे भौ चूका निर्भौ होए बसे सगल ब्याज मन ते खै नसे जिसका सातिन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चरित प्र

अवतार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब गीत विसारो चरण कमल हृदय में और तारो करण कारण सो प्रभ स्मरत दृढ़ कर गहो नाम हरवत एहो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कुंत उठतावह सो धन हर सेवा ते पावह जिस सुख कौलित बाचै मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटै हर अवखत लाए सर्व निदान मैं हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन प्रबोधो हर कै नाए दह दिस भावत।

सिमर सिमर सदा सुख पाओ, भाव बिनसै पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास, तित घर जाए बसै अविनाशी, कहो नानक काटी जमपासी। तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा, आवागमन मिटै प्रभ से, आप त्याग शरण गुरुदेव। इउं रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनक उपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत।

जाजक जन जाचे प्रभदान, कर कृपा देवहु हरना। साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो, सास सास प्रभु तुम्हें त्यावो। चरण कमल क्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभु की नितनी। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार। प्रभु की दृष्टि महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखिया से जन तृपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सो पर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध के संग। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अन दिन निवला। बड़ भागी जपया प्रभु सोए, नानक नाम रत्ते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु होयो दयाल, सेवक कीनू सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी, रव रहया सदसंग हजूरी। जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भगती नाम समा। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन महराख, गुर प्रसाद को बिरला लाख। सो क्यों बिसरे जे अगन महराख, गुर प्रसाद को बिरला लाख। सो क्यों बिसरे जे बिकते काट, जन्म जन्म का टूटा गांड। गुर पूरे तक यह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो इहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरै नाम जपावो। भगत पाए करिए संसार, बिन भगती तन होसी चार। सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर यही सुहाओ। नेत्रों पेख दर्श सुख होए, मन विकसे साध चरण होए।

अष्टपदी। जब अकार इहो कछ न दृष्टिता, पाप पुन तब कहते होता। जब धारी अपन सुन सुमार, तब बैर विरोध किस संग तुमार। जब इसका वर्ण चिहन न जापत, तब हरत शोग कहो किसे व्यापत। जब अपने आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करन हार न दूजा। जब होवत प्रभु केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस कौगनी। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सहज सुपाए, तब शिव सप्त कहो कित ठार। जब आप है आप अपनी जोत धरे, तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन वादे।

जह स्वरूप केवल जगदीश, तह चल सिद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसे भूख।

अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई, जह सर्व कला आपे परवीन, तह वेद कतेब कहा को ऊची। जब अपने आप आप उतार है, तो सगन अपसगन कहा विचार है, जह आपन ऊच अपने आप मेरा, तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात, नानक अपनी गत जानू आप, जह अचल अचेद अभेद समाया, ऊहा किसे व्यापक माया, आपस को आपे आदेश, तेहो गुण का नाही प्रवेश, जह एक है एक एक भगवंता, तय कौन अचिंत किस लागे चिंता। जह अपने आप आप पतियारा, तय कौन कथे कौन सुनने हारा, बहो बेअंत पूछते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा। जय आप रचियो पर पंच अकार, तेहो गुण में कीनो विस्तार, पाप पुन तय पई कहावत।

जिस राखै तिस कोए ना मारै, सो मुआ जिस मनो बिसारै, तिस तज अवर कहां को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाकै सब हात, अंतर बाहर जानहु सात, गुण निदान बे अंत अपार। नानक दास सदा बलिहार, पूरन

अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हलत पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच प्रीखिया। मन तन नाम जपो लिवलाय, दुख दर्द मन ते भौ जाय। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभै खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर न आवै जाहे। तिसते दूर कहां को जाए, उबरै राखन हार ते आए। निर्भौ जपै सगल भौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख, नाम जपत मन होवत सुख।

मत पूरी अमृत जा की दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जा के अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सु

अस्पदी। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समगरी एक घट माहे,

एकण सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुनै शुभ बचन, सर्वव्यापी राम संग रचन। जिन जाता किस की ए रहत, सत वचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, कर्म करा मनहार सब जाने। अंतर बसे बाहर की ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, किस प्रभ ते सगली उत्पत। किस भावे ता

जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जने आया जिस प्रसाद सब जगत कराया जन आवन का यह स्वभाव।

अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट करके साथ साथ सिम रहो गोविंद मन अंतर की उतरै किंद आस अनित त्याग हो त्रंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर धन के पर लेहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो।

उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत ना साध संग लै सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की से आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी।

सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सुहोत निदान, सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख

हर धन खाट चले जन सोए नानक जिसह प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध।

वाणी सिमरत शास्त्र वेद पुकाणी सगल मतांत केवल हरना गोविंद भगत कै मन विश्राम ओट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कर मस्तक कर्म प्रभु पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत

जागत प्रेत सक्यात सो सिर जाल पपणे जो सिर निवे गुर अमर नित ते नार दुख न भुख ते नार निधन न कहिए है ते नार शोक न हुए ते नार से अंत न लही है।

ते नर उथप बिथपै सुख लहे ते नर संसार मह अपै पट रिद रिप मद ते सक्याथ ते जन सक्याथ ते नर जालप बने गुर अमरदास सुप्रसन्न जे तै पढ़ियो एक मन धरियो एक कार एक पछाण्यो नैन बैन मोह एक एक दोहो ठाई ना जाण्यो एक सुपन एक प्रतख एक एक समहलीनो तीस एक अर पंज सिद्ध पैंतीस न कीणो इको जे लाख लखों अलख है एक एक कर भरने गुर अमरदास जालप भणे तू एक लोड़े है एक मने जे मत कही जय देव जे मत न मैं समाणी जे मत तरलोचन चित भगत कंबीर जानी रुक मांगत करतूत राम जंपो नित भाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सो मत जल जानी जुगत गुर अमरदास निज भगत है देख दर्श पाव मुक्त गुर अमरदास परसी है ओह पातक बिनास गुर अमरदास परसी है सिद्ध साधक आसास है गुर अमरदास परखी परसी है ध्यान लई है पौ मुके गुर अमरदास परसी है अनपौ लभ गौ चुक है एक बिन दुगण जो तौर है जा सुमंत्र वह मान वह लहे जाल पा पदार्थ तड़े गुर अमरदास जिठ मिल है सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग्रह तांते अंगद लहना प्रगट दास चरण लिव रहे चित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण बखाण जो गुण अलख अगम तन है गुण अंत न जाण बोहे थो बिदाता निर्मय सब संगत कुल उदरण गुर अमरदास कीर्त कहे त्राह त्राह तो पाए शरण आप नारायण कलाकार जग मह परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जह कह तह परपूर शब्द दीपक दीपायो जेह सिख है संग्रह तत हर चरण मिलायो नानक कौल निमल अवतरयो अंगद लहण संग हो गुर अमरदास तारण तारण जन्म जन्म पाशरण तो जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिख है शरण परें ते उबर है छोड़ जम पुर की लिख है भगत भाई भरपूर हृदय उचरै करतारे गुर गौहर दरिया पलक डुबंत है तारे नानक कौल निमल अवतरयो गुर करतारे उचरे गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर परे चित चितवो अरदास कहो पर कह पे ना सको सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हो तको तेरे हुक्म पवे निशान तब करो साहिब की सेवा गुर जब जब गुर देखे शुभ दृष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहो गुर अमरदास कारण कारण
जब तू रख है तिव रहा पिखे के

चित है लिव लावे। काम क्रोध वस करे पवन उडंत न तावे, निरंकार कै बस देश हुक्म बुझ विचार पावे। काल में है रूप करता पुरख सो जाने, जिन किस कियो गुर मिलो सोई भिखा कहे। सहज रंग दर्शन दियो रहो संत हो टोल, साध बहुतेरे डिठे सन्यासी तपसी है मुखों ए पंडित मिठे। बारस एक हो फिरयो किन न परचा लायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी न

काली बोली रात कहर भी तरदी हथ ते हथ मारिया भी नजर नहीं आंदा। शहीदां नूं अपनी हिक ते सलाई ते रणभूमि आप भी सूत सुती पई है। खून दी नदी ते रत मिल दी कहानी भी खामोश वातावरण में खामोश ही जापदी है। इस भयानक ते डरावनी रात विच इक मुटियार अपने हथ विच मिसाल लई कुछ लभदी चिरदी है। इह मुटियार है कौन? इह है रोपड़ दी जंपल चमकौर साहिब विखे व्याही होई दलेर सिंह ने बहादुर शर्म कौर, जो मैदाने जंग विच दुश्मनां दीआं लाशां विचों तीन शहीदां शहीदां दीआं मृतक देहां नूं लभ लभ के इकट्ठियां कर रही है ते फिर इकट्ठे कीते घाह फूस अते झाड़ मरिआं उपर टिका के उन्हां नूं अग्नि दे रही है।

बहादुर शर्म कौर का ताना सुन के मुगल सिपाही सिंगनी के बिजली वाल टुट के पै गए। इस लड़ाई विच एक पठान ने बहादुर शर्म कौर के पिछले पासों की जा बरसी मारी तो कलगी धर की बीस पुत्री गेड़ा खा के उस शिखा विच जा डिगी जिस विच वो अपने शहीद हुए वीरां दा सत्कार कर रही थी। इस दृश्य में भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने इस तरह कलमबद्ध किया है।

0: मिलिए प्रभ मेल दूजे भाई हुई। गुआची कहा क्योंकि दूजे भाई बिच फस गए। भादों ने तो जन्म दिता सी दूजे भाई ने, भादों धर्म भुलानिया दूजे लगा है। मैं इस कर रहा सब पिछले दिहाड़िया लड़ी जोड़न लगी अर्ज करा। मूल रूप विच शीतलता प्रभु है, निरंकार है, तपत संसार है, आतिश दुनिया खुनक नाम खुदाया। मूल जोड़ना चाहना जिन्ने महीने बदलते ने, जिन्निया रुत्तां बदलदियां ने, ये सारिया इन दो चीजों से ही आधारित ने। जिन्ना जिन्ना धरती का हिस्सा सूरज के अग के नेड़े तपत के नेड़े तुरया जाता है, उन्नी गर्मी बढ़ जाती, रुत बदलती जाती। जिन्ना सूरज तो दूर होके रहिंदा है उन्नी शीतलता प्राप्त होती है। एक पासे निरंकार है, एक पासे संसार है। यो मनुख के जीवन दिया अंदर दिया रुत्तां बदल दिया ने। गुरु ने फरमाया, कह लगे इस बार दे सूरज नाल मेरा कोई संबंध नहीं है, रुत्तां बदल दिया रहनिया ने ते सूरज ते निर्भर ने। कह लगे मैं सवारना चाहना अंदर का बारह मां, क्योंकि अंदर भी कोई रुत्तां बदल रही है। जिन्ना जिन्ना मनुख संसार के पदार्थों की तपत रूप विच ग्रिप विच आई जाता है, रुत बदल जाती है, तपदा है, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। ते जिन्ना अंदरली हाउ रूपी सूरज तपत नालों दूर रहिंदा है ते निरंकार नाल जुड़िया रहिंदा है शीतलता नाल, त्यों त्यों इस रुत तो तपत तो बच जाता है। अगे जाके हर की तपत तो तर्रा के जेठ हाड़ दी तपत तो तर्रा के मेदनी अरदास कर दी है। ते मेदनी का मालिक अरदास सुन के बदलां नू गुरु रूप बदलां नू हुक्म करदा, जाओ नाम रूपी बरसात करो अंदर दबारा मां, नाम रूप बरसात करो। गुरु बख्शिश करके जदों धर्म की नाम रूपी बरसात करदा फिर भी इस हौ कोलों तपत कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदी ते वो अंदर ना सेक जरा अंदर समोई बैठी हुंदी ना तपत उन्हों भादों विच बाहर कढ दिंदी ते वो कढ दी है धर्म के बराबर खड़ा करके भरम नूं। धर्म ते भरम दो आमो सामने खड़े हो जाते हैं। भादों उसनू कहते हैं जदों दो भा खड़े हो जाए, भा दोए भरम भुलानिया, भुलन का चांस भी उत्थे हुंदा जिथे एक नहीं दो राह हो। एक पासे धर्म है, एक पासे उसके दी नकल भरम है, मिक्स हो गए ने। मानो ठंडिया बूंदा की शीतलता तपते सूरज की समा बैठी इस मेदनी विच धरती विच गर्मी दोनों मिक्स हो गई। भादों का महीना की हुंदा है जिथे दो चीजा मिक्स हो जाए, बारिश ते धरती दा ओ हिस्सा जेड़ा सुक सुक के धूड़ बन चुका होवे, ओ दोनों मिलके चिक्कड़ बन जांदे ने।
1: ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ
0: ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਪਤ ਦੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਵਿਲਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਭਰਮ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜੰਗਮ ਫਿਰੇ ਦਸਣ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦਾਦਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਾਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੱਛਰ ਡੰਗ ਸਾਲ ਭਰ ਸੁਭਰ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹੀਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌੜ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਤਪਤ ਨੇ ਵੀ ਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਭੜਾਸ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ

पूछ ले, प्रेम पैदा होएगा, कभी पूछेगा? जिसके मन में शौक ही नहीं वो राह क्यों पूछेगा? हेलो, गुरु नाल जुड़न का सब तो पहला तरीका जो हिरदे विच प्रभु मिलाप का प्यार उमा प्रेम पैदा होएगा, तांग पैदा होएगी, चाओ पैदा होएगा, फिर गुरु को आके पूछेगा, तां गुरु नाल जुड़ेगा।

दिनों बाद सब पैदा होगी उपराले शुरू हो जाएंगे, आलस रह जाएगा, गुरु मददगार होएगा, तेरी बात फाड़ जाएगा, कदम तेरे चलन के दिखा गुरु देवेगा, बस आ फर्क गुरु काम करता दिशा देने का, गुरु दिंदा है रास्ता, गुरु दिंदा है डायरेक्शन, पर तेरे कदमों में सुस्ती निकल जाए, तेरे पैरों में आलस निकल जाए, ते आलस की थां आ जाए उमा लालसा, जेरा प्रेम नाल पैदा हो जाए, आलस जाएगा लालसा नाल ही, जिन्नी देर लालसा नहीं होएगी आलस नहीं जाएगा, इसलिए गुरु ने आख दिता कहने लगे हो भले यार जे लालसा करने ते आलस क्यों, आलस ते उमा दो बिल्कुल विरोधी शब्द ने, जिथे उमा होवे उथे आलस नहीं हुंदा, जिथे आलस होवे उथे कोई उमा चाओ नहीं हुंदा, गुरु ने आख दिता संत सहाई प्रेम के, जदों तेरे मन अंदर प्रेम दा उमा पैदा होवेगा गुरु तेरी बांह फड़ लेगा सहायक होएगा।